चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवा। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत, देख तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीता श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले, बोल जी वाहे गुरु, बोल जी। सिखा नु सिखी दान, केस दान रहत दान, बबेक दान वसाह दान, परोसा दान, दाना सिर दान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बोंगे जुग जुग अटल, धर्म का जयकार, बोल जी वाहे गुरु, बोल जी। सिखां दा मन नीमा मत उच्ची, मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो, श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे, जिन्ना तो पंथ नु विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार, ते सेवा संभार दा दान खालसा जी नु बख्शो। हे नमानियां दे मान, नतानियां दे तान, नियोटियां दी ओट, तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान, सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर सबद चौंकी, आनंद साहिब जी की अरदास, भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ। जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है, तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास। सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू, अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा, नाम दान बख्शना शुभ भावनामा पूरियां करनिया। आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है, दर प्रवान होवै, प्रवान होया प्रसाद, संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो। सुख होवै नाम चित आवे, सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा।

0: करे, वड़ी है दलाल के मुस्पिए करे, नान का गैसो मिले जिखट कहले दे महला पहला।
1: जो जोर सरनाउनी आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख वसै नित नित होए कुआर, सुचे नया किए बैंज पिंडा दो, सुचे से नानका जिन मन वसया सोए पड़ी।

चुप पी कर जाहे, परवाह नहीं किसे केरी बाज सचेना। दरवाट पुरखच मंगा जब देता खाए, दीवाने को कलम का हमा तुमा मेल, दर ले कपीड़ छुटे।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद चक क्र चिहन यर बरन जात यर पात नहन जिह रूप रंग यर रेख पेख को कहना सकत किह अचल मूरत यन पाओ प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गणजैन त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत कान हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जोगावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै पागठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से यह आए सफल तिना के कमां मेरे राम हर जन कहौ बल जाई केसा का कर चवर टोलावा चरण धूड़ मुख लाई जन्म मरण दोहु मह नाही जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैन मिलाए सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे से तीराते सच्चा सुख सच्ची वड़ियाई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन कै पीसण पीस कुमावा नानक की प्रभ पास बेनंती तेरे जन देखण पावा गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवहै अंतर सहज त्यान ओए सदा आनंद विवेक रहै दुख सुख एक समान तिना नदरी को आया सब आत्म राम पशान लिखै कतहि ना छूटियै खिनो खिन भूलनहार बखसनहार बखसलै नानक पार उतार सुकह टल गुर सेवियै एनिस सहज सुभाए दर्शन परस आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै
ਗ੍ਰਹਿ ਤਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂਰ ਅਰ ਸਹੁ ਕੁਰ ਸਹੁ ਚਟੀਐ ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ

त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित होण खसम न पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित होण खसम न पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ ना दे लिव लागण जिने हर के चरण विसारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिन के तै दुख निवारे रहो तू दयाल दया पत दाता क्या एह जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते होए ऐसा आख बखाने गोरमुख हो वैसो मुक्त कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुकत जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तेन की गहन गत कही न जाई सच्चे आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कहिया है ना और वार ना पारे जिस नो नदर करे सोई जन पाए

सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातार हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हर हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समान एक दात एक भिखारी जी सब तेरे चोज बिडाण तू आपे दाता आपे भगता जी हां तुद बिने अवरण जान तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाण जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाण हर त्यावह तुद जी से जान जुगमह सुखवासी से मुकत सिमुकत भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक रहे हर पूजा जी तब तापह जपह बेअंत तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंत से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत तू आदि पुरख परंपर करता जी तुद जे बड़े अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तुद आपे भाव सोई वरता जी तू आपे करे सो होई तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुदे आपे सरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सक जान होई आस महला चौथा तू करता सच्यार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हम पाई रह सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करहि तन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़े आप मिलाया तू दरी आओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाही जी जंद सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जन एह सोई जन जान हर गुण सद ही आख बखाण जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही और नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोई तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तत सरबरड़ा भई लिनवासा पाणी पावक तनह किया पंकज मह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबी अले मान एक न चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हों जती सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तन की शरणा जंतु नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मान खुदे हरिया गोविंद मिलन की है तेरी बरिया अवर काज तेरा किता न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंग जाम लाग भवजल तरन कै जन्म मृथा जात रंग माया कै रहा जाप तप संजम धर्म ना कमाया
सेवा साध न जानिया हर राया कौ नानक हम नीच कर्मा शरण बरे की राखो शर्मा जाप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध न जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कव्यवाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तम काब हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज करदा करिया सब अरन कवा संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाद कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चौन चौन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ मुझे वरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री आस्तोज जो करिया हो रक्षा राख लिह मोहे राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमह पुरी चतुर्दशकंता काल पाई ब्रह्मा बाप तरा काल पाई शिव जु अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की आओ वेदराज ब्रह्मा जूथी आओ जवन काल सब लोक सवार नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आदि अंत कै अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेवगुण सुख दिया सतरन को पालम बद किया काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरिया स्थूल सब पर कृपा दृष्ट कर फूल संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक के पीर पछाना घट घट के पट पट के जाना जब उद कर करा करतार प्रजा तरतब दी अपार जब या कर करत हूँ कम हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझो चार तुम सब ही तेरा तनरालम जानत भेद भेद अरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ चारत भेद जाको भेव न पावत भेद ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ काश भेद न जानत महादेव को कैत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पैव आप अपनी बुद्ध है जेती मरणत भिन्ना भिन्ना तोह तेती तुमरा लखन जाए पसार केह बिद सजा प्रथम संसार एका रूप अनूप स्वरूप रंग भयो राव कहीं भूप अंडा जा जेर जा सित जकीनी अत भज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप सियाम भव अब रक्षा मेरी तम करो सिख उबार सिख संघरो दुष्ट जिति उठ बतत पात सकल मलेश करो ननकाता जे अस्तु तब सरणी परी तनके दुष्ट दुखित होवै मरी
ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਉਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ। ਜੋ ਕਲ ਕਉ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨ ਹੈ। ਰੱਛਾ ਹੋਈ ਤਾਹੀਂ ਸਭ ਕਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰਿੰਦ ਕਲ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਾਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨ ਕੁਮੋ ਹਰਹੋ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਵਿਸ ਕਨ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਦ ਮੈਂ ਸੰਭਾਰ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰ। ਜੇ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਉਹਾਰੋ ਕਹ, ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹ। ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਉਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠਾਰ ਮੋ ਸਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਉਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠਾਰ ਮੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਸਵਈਆ ਪਾਈ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੁਆਂਕਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪ੍ਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨੇ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ, ਅਮੇਕ ਨ ਜਾਣੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨੇ। ਦੋਹਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਸਾਢ ਕੈ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਸਾਢ ਕੈ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ।

निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। ढाकण हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते, अविनाशी अवगत स्वामी पूरन पुरख बिधाते। उस्तत कह न जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का, नानक दास ताकै बलिहारी मिला नाम हर निमका। हों अपराधी गुण हंगार हों बेमुख मंदा, चोर जार जुआर हों पार कर जो हंदा। निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा। विश्वास घाती अकिरत कान मैं को न रखंदा, सिमर मरीदा ढाडी सतगुर बख्शंदा। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास, राखहु शरण आई। सुख टल गुर सेवी आए अहन सुसहज,

मानतान अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास रखहु सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास रखहु सरनाई, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डठे सच्चे पाते साह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसाहु, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दै, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाहु, सत नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवां, त्रिपत भाई सच भोजन खाया, मान तन रसना नाम ते आया, त्रिपत भाई सच भोजन खाया, मान तान रसना नाम ते आया, जीवना हार जीवना, जीवन हार जाप साध संग, रहाओ अनेक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए, आन दिन कीर्तन हर गुण गाए, हस्ती रथ अस असवारी,

हर टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हर लाहा। आगे बसन सुहेला, औद घटा दिन सरै नारे। मान गुरमिल काज सवारे, रहाओ एहो संसार बेकार। संसे मह तरेओ ब्रह्म ज्ञानी, जिस हे जगाए पियावै एहो रस। अकथ कथा तिन जानी, जा कौ आए सोई बिहाजहु। हर गुर ते मनहे बसेरा, निज घर महल पावहु। सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा, अंतर जामे पुरख बेदाते। सरधा मन के पूरे, नानक दास एह सुख मांगा। मोकौ कर संतन के तूरे, अंतर जामी

0: कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम मडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया, खेलै सगल जगत।

0: कर कृपा हर नाम दिवायो सर्ब सुख हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाए।
1: श्लोक पवन गुरु पाण पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाए दाया खेलै सगल जगत, जगत। संगे आईया बुरे आईया वाचै

परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेहे मिलन तुजम त्रास मिटाए।

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद आसा महला पहला। वार श्लोकां नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजे की तुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते कीजे करत ना लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार इते चानण होंदिया गुरबिन कोर अंधार। महला पहला।
1: नानक गुरु ना चितनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बवाड़ ज्यों सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुट्टे।

सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सोख मूर्त नाम निरंजन काया अकाकार जतियां मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावे कार एक

पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगटा सुनाया, सतगुर मिला सदा मुक्त जिन विचो मो चुकाया। उत्तमे विचार है जिन सच्चे।

0: पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ परी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती यार जा, पढ़िए जेते सास, ना निकले खेक गल, और हो मैं चखना चाक महला पहला।
1: लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया, बो तीर्थ पव्या ते तो लव्या, बापे किया दे दुख दिया, सौवे जी अपना किया, अन्न ना खाया, साध गवाया, बहुत दुख पाया, दूजा पाया, बस्तर ना पैरे अनस कहरे, मोन बिगुता क्यों जागे गुरबिन सूता, पागो पिताना अपना किया, कमाना अल मल खाई, सिर शाई पाई, मूर खंडे पत गवाई, बिन ना वै किश थाए ना पाई, रहे बिबाणी मड़ी मसाणी, अंद ना जाने फिर पछताणी, सतगुर पेटे सो सुख पाए, सतगुर पेटे सो सुख पाए, अरकाना मन वसा, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते नहि केवल, हमें शब्द जलाए, पौड़ी भग

0: जाहो करी न होई बलिहारी कुदरत बसिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता कल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब शिव सवाले जिन की सो पार पिया कहू नान करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा कृष्णं सर्व देवा देव देवा।

पौड़ी पड़िया हुआ है गुनाहगार तमी साधना मारी है जेहा काले कलना ते बहुना उपचारी है ऐसी कलाना खेडी है जित दर्ग के हारी है पड़िया तुमिया विचार के विचारी है।

0: कारण करण समर्थ श्री धर राख लियो नानक के स्वामी।
1: नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत कीनी विरखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जिह कछ कही ना जाई सोडी सृष्ट सकल तारण को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई सोडी सृष्ट सकल तारण को

0: जन्म मरण दुख जाए।
1: गुण गावे रविदास भगत जय दीप त्रिलोचन, नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने, योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान। सुख दियो परीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस नानक गोर। नित नव तन जग शायो।
0: गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो, शब्द हर हर जपै नाम नव निध अपै, रसन अह निस रसै सत कर जानियो। फुन प्रेम रंग पाइया गुरमुख त्याइया, अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो। बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो, जन्म कुल उद्रो द्वार हर मानियो। जो ता सब सुख इत उत तुम बंसो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो।

0: जोग ते माणियो।
1: जब लो नहीं भाग ललार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे बचतायो। तत विचार यह मथुरा जगता।

0: अंतन पावत देव सबे मनो इंद्र महासेव जोग करी हुन भेद बिरंच विचार रहो हर जाप न साड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जुन माहे तरी।
1: दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पापनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रतिपालन आत्म रत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुरु तिलक सत लागे सो पै तरै गुर जगत फिरण सी अंगरो राज जोग लहना करै।
2: सच तीर्थ सच इशनान अर पूजन पाओ सच सदा सच पाखंत सोहै सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बोहै जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल वखान दर्शन परसै गुरु कै सच जन्म परवान।
3: सतयुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेतै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारथ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कलयुग परमाने नानक गुर।

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख होवे सिफ तख समी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सचे पात सह मल जन्म जन्म दी सजन सचा पात साहु सिर साहांद जिस पास बैठे आ सोहे सबना दावे सजन सचा पात साहु सिर साहांद जिस

भक्ति हो तो जाता, माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता। हो मैं मार मनसा मन है समाणी, गुर का शब्द पछाता। अचिंत काम करह प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा। गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब काज सवारन हारा। ओना की रीस करे सो बिगुचै, जेना हर प्रभ है रखवारा। बिन सतगुर सेवे किने ना पाया, मानमुख भौक मोए बिल लाई। आवहै जावहै ठौर ना पावहै, दुख महै दुख समाई। गुरमुख होवै सोय अमृत पीवै, सहजे साच समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै, जे अनेक कर्म करै अधकाई। वेद पढ़ै तै बाद बखाण है, बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, भज छूट है गुर सरनाई। जिन हर मन वसिया से दर साचे, दर साचै सचियारा। ओना दी सोभा जुग जुग होई, कोई ना मेटन हारा। नानक तिनकै सद बलिहारै, जिन हर राखिया और तारा। जिन हर मन वसिया से दर साचे, दर साचै सचियारा। ओ नां दी सोभा जुग जुग होई, कोई ना मेटन हारा। नानक तिनकै सद बलिहारै,